0: केसरी
1: तिम्रो गाला को तिल जहां से मेरो दिल
0: वेल एवरीवन फाइनल रिहर्सल 1 2 3 स्टार्ट

0: Assalamu alaikum. Good afternoon. Khush aamdeed. Welcome. GIANU Northern Territory. Aap sun rahe hain Siddhara, the Urdu language show. Your ultimate cultural escape right here on ACCC 102.1 FM. Main hoon aapka host Shahab Siddiq. Aap sun rahe hain Alice Springs se, Darwin se, Tennant Creek se, ya duniya ke kisi kisi kone pe bhi online on ACCC.com.au. आज आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट वीक का स्पेशल इंडिपेंडेंस का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच. तो पहली रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान टीम के कैप्टन इब्तिहाज भाई, वो हमारा शो आज शुरू करेंगे.
1: इब्तिहाज भाई, हम आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच खेलने आए हैं, तो आप हमारी टीम पाकिस्तान के कैप्टन हैं, बताएं भाई क्या हाल चाल है.
2: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. यस, आज हम इंडिपेंडेंस कप खेल रहे हैं. यूजुअली हम एवरी ईयर खेलते हैं, लास्ट ईयर मिस हो गया था, दिस ईयर वी आर गोइंग अगेन. अभी यहाँ पे कम्युनिटी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की, और लड़के भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो वी हैव अ गुड टीम. इट्स अ वेरी फ्रेंडली गेम. आर्च राइवल्स है दोनों, पाकिस्तान इंडिया, ऑलवेज ऑन द क्रिकेट फील्ड, सो इट्स ऑलवेज अ फन डे एंड अ फन इवेंट टू इन्जॉय. अभी थोड़ी बारिश हो रही है एंड होपफुली इट स्टॉप्स एंड वी गेट गोइंग विद द गेम. Very excited for this, and I'm sure everyone else is. That's pretty much it.
1: Yeah, it's drawing out the crowd. Sab aaye hain barish mein bhi dekhne ke liye aur khelne ke liye bhi. Toss ho chuki hai.
2: Yes, the crowd, everyone is very excited, even in the communities, both from both sides, from Indian side and from Pakistani side. We had some good sponsorships this year, which is a really good part of ke puri jo Alice Springs ki society hai, wo usko kind of it backs it up. टॉस हो चुका है, वी वॉन द टॉस एंड वी डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो वी थॉट क्योंकि हमारे बॉलर्स जो है पाकिस्तानी बॉलर ऑलवेज गुड फॉर स्विंग एंड वी एक्सपेक्ट द सेम हियर टुडे एज वेल. सो वी विल सी कि थोड़ी सी बारिश रुकती है तो वी विल गेट ऑन द फील्ड एंड इंशाल्लाह वी विल विन टुडे.
1: इंशाल्लाह वी आर गोना टॉप इट टुडे. यू गॉट एनी नेम्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर टुडे? कौन कौन है आपके आपके प्लेयर दो देखने चाहिए हमें?
2: So we have some veterans here, and then we have some new players who have got recently moved to this town and who are now part of the team. In veterans, obviously Imran is one of the guy who would always be someone you would look out for. Then in the new guys, we have Shwebi, who's a really good bowler, Shahnawaz, who has done splendid in the last cricket season. So pretty much everyone. Yeah, we have Waheed Bhai, who has been here for a very long time in this town. So pretty much, for in batting side, I would say keep an eye on Aves. Once he hit it all the way to the outside the park. So I think we have a pretty loaded team. Sab jo hai ek dusre se badhke achhe khiladi hai.
1: Yeah, it will be a good match. Good luck. Aur phir game ke darmiyan bhi aur baat karenge. Good luck.
2: Thank you very much, Doctor. Thank you.

0: एंड नेक्स्ट अप वी हैव सुखमन भाई, वो हमें बताएंगे अपनी इंडियन टीम के बारे में. और आए भाई, सुनते हैं.
1: जी सुखमन भाई, आप इंडिया टीम के कैप्टन हो, बताएं भाई क्या हाल चाल है आपके. टॉस हो चुकी है, आप बैटिंग कर रहे हो.
2: जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है. सब दोनों साइड से प्लेयर्स को एक बार फिर से इकट्ठे खेलते हुए, इकट्ठे देखते हुए, विच इज़ लाइक सो गुड टू सी एवरीवन, जस्ट एज यू कैन सी लाइक हैविंग ईच अदर, शेयरिंग थॉट्स, फैमिलीज, शेयरिंग फूड्स, एंड इट्स सो गुड.
1: It's good. The crowds are drawing out again. बारिश भी हो रही है, फिर भी लोग आए हैं सपोर्ट के लिए. और everyone's really excited about the match again after 1 year hiatus.
2: जी भाई, yes. बारिश अभी जैसे जैसे मतलब दिन की आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग और आएंगे. होपफुली मैच हो जाए. अगर मैच हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा. दोनों तरफ से क्राउड होगा, चीयर अप होगा दोनों टीमों में. देन वी गोना शेयर अ फील्ड टुगेदर. दिस इज ऑनर फॉर बोथ टीम्स एंड होपफुली वी विल प्ले टुडे, अदरवाइज hard hitter as well. Then we have Ritesh, like one of our key player. He have class and all the skills. And in a bowling part we have Gurpant, he's one of our main key bowler. Then we have two spinners, Jitinder and Sukhminder Chaudhary. So yeah, we have a strong team.
1: Definitely strong team, exciting players. और बहुत मज़ा आएगा. तो बहुत शुक्रिया आपने ये event organize किया और सबको बुलाया. तो आज के लिए जस्ट एक recognition होगी हमारी हमारी relationship की, history की और दोस्ती की.
2: जी सर जी, नहीं, thank you आप सबका आने के लिए. ये तो बहुत अच्छा day है कि हम सब इकट्ठा फिर से खेलेंगे सब कुछ फिर से. Hopefully everything will be good.
1: Very good. तो फिर गेम में फिर और बात करेंगे, मैच में दौरान भी. तो और कुछ बोलना हुआ तो जरूर आना बोलने के लिए. और फिर गुड लक टुडे.
2: जी थैंक यू. थैंक्स.

0: So we had a really good first day on the Saturday last weekend. लेकिन बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी थी तो पहला दिन कोल्ड ऑफ हो गया था तो इनिंग्स के ब्रेक में हमने दो तीन इंटरव्यू लिए थे तो चले आए सुनते हैं
1: जतिन भाई बारिश हो गई है
2: जी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अनएक्सपेक्टेड था हम खेलने के लिए तो रेडी हैं लेकिन इक्विपमेंट गीली हो रही है
1: कैसा लग रहा है वहाँ पे पिच पे कैसी गेम है
2: गेम अच्छी जा रही थी सो फार सो गुड कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर हो गया 8 over 47-48 सो एवरीथिंग गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू अवर प्लान बट इट्स ऑल गुड बट द रेन इज़ टू हैवी एट द मोमेंट सो वी जस्ट वेट एंड वॉच लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन द नेक्स्ट 10 to 20 minutes एंड वी कैरी ऑन
1: ठीक है अब तो मुश्किल ही लग रहा है बारिश बहुत तेज़ आ रही है
2: जी वही चक्कर है कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और किसी को बॉल लग भी सकती है ये एक फ्रेंडली मैच है दोनों नेशंस के बीच में इसमें कोई कंपटीशन वाली तो बात नहीं है तो फॉर द सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स वी वेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स देन वी फिगर इट आउट
1: ठीक है भाई थैंक यू भाई
2: ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू
1: शाहनवाज भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने कैसे थे कंडीशन पिच पे
3: पिच ओवरऑल ड्राई थी कंडीशंस और बॉल भी न्यू बॉल मूव हो रहा था बट जो आउटफील्ड थी वो थोड़ा वेट था जिसकी वजह से थोड़ा हमें बॉल को ड्राई करना पड़ रहा था बार बार बट ओवरऑल देयर वाज नो मतलब कि पिच स्लिप नहीं हो रहा था बॉल ग्रिप कर रहा था और सीम भी हो रहा था
1: अभी तो स्कोर हुआ ऑलमोस्ट 2 for 7, 3 for 30 or 4 for 30
3: इन 8 overs फॉर टू
1: और आपने कितने विकेट लिए
3: दोनों मैंने लिए विकेट्स जी
1: और एक तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जो बॉल्ड की थी उसके बारे में बताएं भाई
3: मेरा शुरू से यही था जो उनका मेन बैटर था उसके अगेंस्ट स्टांस यही था कि उसको मैंने इन स्विंग लाना है यार्क तो पहले दो बॉल मैंने किए बट वो मिडिल स्टंप से मैंने कोशिश किया लेकिन वो लेग पे वाइड चले गए और तीसरा बॉल जो किया वो फुल टॉस चला गया चौथा बॉल जो मेरा एग्जैक्ट जो मैं ट्राई कर रहा था वो सीधा इन स्विंग यार्क हुआ और वो सीधा उसके लेग स्टंप उसने उड़ा दिया
1: बहुत अच्छा आपने कंपोजर भी रखा और आपने ओवर को सही कंट्रोल रखा था बहुत अच्छी बॉलिंग की वेल डन भाई
3: थैंक यू सो मच शुक्रिया
1: ओके गगन भाई अभी हम क्रिकेट के लिए आए हैं तो आप हमें बताएं भाई ये क्रिकेट मैच क्या हो रहा है कौन खेल रहा है और स्पॉन्सरशिप के बारे में बताएं ठीक है
4: हेलो यहाँ पर आज हम खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे कम्युनिटी क्रिकेट और इसको हम मल्टी कल्चर कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रही है और हमारे कुछ कम्युनिटी पार्टनर्स भी हैं जैसे एलिस स्प्रिंग टाउन काउंसिल नो मोर बुलबर्थ और एलिस स्प्रिंग एलिस टाइगर्स क्रिकेट क्लब और हमने सोचा था कि आज मैच बढ़िया होगा काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए और मैच देखने के लिए मगर बारिश का डिफरेंट प्लान है बारिश हो रही है तो बाद में अभी 8 over हुए हैं और मैच बीच में रुका हुआ है लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैच आज नहीं हो पाएगा
1: काफ़ी तेज़ी से बारिश हो गई थी और बारिश रुकने से पहले स्कोर था 3 for 44 और पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बैटिंग काफ़ी टफ लग रही थी
4: हाँ तो क्योंकि सुबह भी थोड़ी बारिश हुई थी तो पिच थोड़ी सी मॉइस्चर था पिच में इसलिए बॉल बहुत स्विंग और स्किड हो रही थी तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान साइड को हुआ है और वो डेफिनेटली दे बॉलिंग गुड एज वेल तो 3 wickets गए हुए हैं 44 runs एंड 8 overs
1: अच्छी टॉस सी जीतने की इब्तियाज भाई की तो उन्होंने बॉलिंग सेलेक्ट की थी और अच्छा डिसीजन लिया था और अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या करना है अभी 3 बज गए हैं और 3 बजे के बाद इन्होंने डिसीजन बनाना है और या आज शुरू करेंगे या कल खेलेंगे अभी आपको पता है कोई डिसीजन बनाए
4: अंपायर ने 3 बजे का टाइम दिया था तो वो पिच इंस्पेक्शन करके तो डिसाइड करेंगे अभी बात चल रही है लग रहा है कि पिच में तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से पिच गीली है तो इसलिए थोड़ी सेफ नहीं है बॉलर्स और बैट्समैन के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैच कल होगा कल कंटिन्यू और अभी देखते हैं 5-10 minutes में हमें पता चल जाएगा
0: All right. It was 3 o'clock on Saturday afternoon and the game was called off. Let's hear what the umpires had to say at the end of the first day.
1: So, how's it out there in the middle?
5: Yeah, it was like we are not expecting this much rain, and this is now it's heavier, so we have stopped the game. If it will continue like this, we will start fresh tomorrow again.
1: All right. It's looking tough to get out there again. How was it for you umpiring out there?
6: Oh, it was fine. The weather wasn't that bad, but you can see it coming in. Like, the ball actually held up really well, but yeah, it's coming. You can just see it coming. There's no clear in it when you look out to the west.
1: Yeah, good safe decision, a bit risky out there, and looks like the ball was coming on quite skidding as well to the bat. The batsman was struggling a little bit, but good decision to get out and get out of the rain.
5: Yeah, we don't want to take any risk, and we don't want to get injured all our players, because we have rehabilitation tomorrow, so we will first start tomorrow again. All right.
0: Okay, before we end the first day, we had a few words from one of the sponsors, the No More organization, Gaurav Gimri representing there. He had a few words to say. Let's hear what he has to say and how the No More organization sponsors community events.
1: Okay, we have Gaurav Bhai here. Gaurav Bhai is representing the No More, is it foundation group?
7: Yeah, No More is a domestic violence campaign against violence against women and children. Was founded back in 2006, I believe, by Dr. Charlie King. He's one of the founder, and he's been running the successful campaign for the past so many years, over 20, 25 years. And it's all about coming together as a group in terms of footy players, cricket players, any sort of sport that we can link up with, and then coming up with a solution and saying there's no room for violence in our society, in our community, and there has to be a cycle break by somebody, you know. So that's the program we're running here in Central Australia. And I am a No More community engagement worker based in Central Australia, and I traveled remote communities like Fing, Santa Teresa, Tichikala, Yindumi, and other places. And it's all about putting the message out there for people saying that there's no room for violence in our home. In
1: a sporting event, so ye bhi aapne sponsor kiya hai, to sponsor ke saath aapne kya kya prove kiya hai?
7: स्पॉन्सर के साथ हम साथ साथ में मिल के काम करते, हम लिंकअप आम करते. ये इसका मतलब है कि वी स्टैंड स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस. एंड स्पॉन्सरशिप में हम थोड़ा कुछ करते, इफ दे नीड मर्चेंडाइज और एनी अदर थिंग लाइक यू नो ग्रोसरी अदर थिंग दैट वी आल्सो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कमिंग टुगेदर. It's a collaborative project between Sporting Club and No More, and putting up a message out there for wider society.
1: Yeah. हो गया, but community spirit फिर भी है. हर कोई देखने के लिए भी आ रहा है और हर तरफ smiles नजर आ रही है.
7: हाँ, यही वही ना. ये बहुत सारे लोग इकट्ठे होके गेम खेलना, respect on and off the field, ये सब बाकी बातचीत करना, इससे बहुत positive message जाता है बाहर society में, communities में. वो बहुत मायने रखता है हमारे society के लिए.
0: Okay, that was the end of the first day. We returned the next day on a Sunday afternoon. We have the first interview with Sunny. Sunny had just lost his wicket, and he's going to tell us about how it was in the middle for him. The Indian team was doing really well by this point. They'd made roughly 160 runs with only a few wickets gone. And we decided to mix it up a little bit here. We introduced Punjabi, which is another language of our region, both spoken in India and Pakistan. So here's the interview in a bit of a mixed language.
1: Hello, bhai. Innings hi end aa rahi hai, pehli innings hi.
8: Te
1: tusa kal to wapas aake aaj kafi achhi game kheli hai. Te tusi hale unhi wapas aaye ho, pitch to pitch kaisi thi?
8: ਭਾਜੀ ਪਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਚ. ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਿੱਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਪਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਨੋਇਸਲੀ. ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਪਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਵੀ ਪਲੇ ਸਿੰਗਲਸ ਡਬਲਸ ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਬੈਟ, ਉਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਫਿਰ ਖੇਲਾ. ਤੋ ਆਈ ਮੇਡ 40 ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਜਤਿਨ ਅਭੀ ਵੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਜ਼ ਔਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 50. ਹਾਂਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50. I think this is two over all rahe iske baad, I think to fir inning khatam hai.
1: Ajay bhai bahut hi khulle se khel rahe hain, unko koi instruction mili hui hai?
8: उम्दा प्लेयर है, उसने बोला था पार्टी उसकी तरफ से है तो हम वैसे ही खेल रहे हैं, पार्टी लेनी है उससे।
1: ठीक है भाई, अभी गेम एंड होती है तो फिर और बात करते हैं।
8: हाँ जी भाई, ठीक, शुक्रिया।
0: All right, that was the last interview we did, and here to end off the game, we've got a final match presentation with the two captains, the organisers, and a couple of words from some of the sponsors, as well as Gagan Bhai, who presents the Punjabi show on Friday afternoons. Okay. मुझे स्कोर तो नहीं याद, बट इंडियन टीम ने सही मारा पाकिस्तानी टीम को, तो इंडियन टीम ऑलमोस्ट 180 रन्स बनाए थे उन्होंने, और हमारी टीम पाकिस्तान ने 100 बनाए होंगे तो हम लकी होंगे, बट काफ़ी अच्छी गेम रही थी फिर भी। और सुनते हैं एंड ऑफ द मैच।
9: नो नो, इट्स सो गुड, लाइक मिस्का इज ऑलवेज हियर टू सपोर्ट द मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज, एंड दे आर really helpful with all the food and with that cricket balls and any kind of sports, like especially the newcomers in town, if they need any support with the any kind of like finding house, finding job, they can help you, like any kind of sport, come there, this one stop shop. But if they can't help you, but still they can give you directions where to go. So yeah, yes, use the services, and they have Facebook page, Miska Alice Spring, follow the page, and any kind of events coming up, so yeah, so you can get the update from there. Yeah, so office is near to the Anzac Oval, so they are really helpful all the time.
10: Thank you very Thank much. You. Now I will call my second sponsor, Gaurav. So Gaurav is the community engagement officer from No More Organization.
7: All right. Thank you, everybody. And India versus Pakistan is probably the biggest rivalry in cricket pitch. But today and yesterday, we saw a spirit coming together between India and Pakistan. And it was more of an unity. You know, playing the best way possible we can from both team, and still have that positive energy, positive attitude towards the respect on and off the pitch, and coming together as one team. Or well, as Alice Spring, India versus Pakistan was a massive one. Congratulations to the winning team, and we look forward to doing a partnership in the future, in the coming game as well. So best of luck to both of the team. Thank you.
10: Now 50. He was captain of Team Pakistan. Very good sportsman spirit. Nah. Having some issues regarding the match, overs, this, that, but he resolved very nicely. So thank you.
7: Thank you everyone for coming here today. We all came here for cricket, so obviously we all love the game. End of the day, it's the cricket that brings us together. And thank you to all those who showed up today, support both the teams from both sides. It's never about when we move to another country, it's never about, you know, that who is Indian or Pakistani. We all come together, we play the cricket, we play the game. It's a hard luck. It's always going to be one team who wins, the other one lose. We're on this side today. We would be on the next one. We're going to come stronger. Thank you, everyone, for showing up, for putting all the efforts. Really appreciate that. And pretty good game from this side on the... from the Blues, very good. Thank you, Sukman, for all. I appreciate all the support and everything. And yeah, it was a nice game. We enjoyed both Saturday and Sunday. Hopefully, we'll do better in next year. Yeah.
10: Thank you very much. Now, over to captain of winning team, Sukman.
11: Thank you. First of all, thanks to the weather. We have a full game today, and yesterday it was fucking dripping. And yeah, we have a couple of up and downs yesterday, like. Those guys was, but it was end of the day. Game of cricket is win. Thanks to my boys, they just supported me yesterday for the decision. Like we continue wherever we left. Thank you, thanks everyone. So we played good cricket. You guys give us a tough fight. Like yesterday, we were nearly like very back foot. We wasn't even know like Ajay and Sunny and Jatin. They played good innings. You guys have good bowlers, and thanks to our bowlers too, Pant, Sunny. So yeah.
0: Okay, bhai aur behno, that was the end of our show. Thank you for everyone involved. Bahut maza aaya hamein dekhne ke liye bhi, aur umeed hai player ko bhi bahut hi maza aaya hoga. Aur ab hum apna show finish karne wale hain. Ye suniye aap gana Anar Kali, which is a very topical song to end the show. It was a love story and the creation of one of the beautiful

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, कर शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को तू गुजार।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं।